अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुक ये मेरा अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो सिकंदर रेंटर हूँ।

0: हाम्रै रामेछाप बजारमा चिरञ्जीवी डेरी एण्ड सप्लाई खुलिसक्यो नि। यहाँ त दूध, दही, मही, पनिर, खुवा, घिउ, आइसक्रिम, कुल्फी, लस्सी पनि पाइन्छ नि। त्यहीँ गए त भइगयो नि, मिठो पनि सस्तो पनि।
1: यसको उत्पादन रामेछाप बजारमा एसपी खाजा घर, सफल फलफुल स्टोर, सुमिना स्टोर, सुरेन दुग्ध बिक्री केन्द्रमा पनि पाइन्छ।
0: चिरञ्जीवी डेरी एण्ड सप्लायर्स रामेछाप, गौरी शङ्कर क्याम्पस गेट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 98 41 82 96 10।
2: लौ आयो है, क्वालिटीमा नम्बर 1, दाममा सबैभन्दा कम।
3: ओ प्रकाश।